किनोरी सगल सिंगार तजोरी सगल बेकार धावतो अस्त्र थी आरहाउ। ऐसे रे मान पाए कह आप गवाए कह कर साधन स्यों संग बाजे वजे मृदंग अनाद कोकल री राम नाम बुलय मधुर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रयमोग तैसे ही संग संत बने पवतार नाम बने राम राम राम माल। मान फेर ते हर संग संगी आ जन नानक प्रिय प्रीत मंथी आ बलमलार महला पंजवा। मान कनै प्रमै बनै अमक तरस चल ए।

अरे बिन एक खिन रह ना सकौ, बिन मिले नींद ना पाई, पिर न जीक न बूझै बपुरी, सतगुर दिया दिखाई, सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई, कहो नानक तुझ ते मन मानिया, कीमत कहण न जाई, मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, अखली उंडी जल परनाल, डूंगर ऊंचों गढ़ पाताल, सागर शीतल गुर शब्द विचारू, मार्ग मुक्ता हो मैं मारू, मैं अंधले नावे की जोत, नाम आधार चला गुर कै पै भेत, राउ सतगुर शब्दी पादर जाणु, गुर कै तकिया साचै ताणु, नाम संभाल रूढ़ी बाणु, ठै भावै दर लहस निद पराण, ऊंडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार।

सतगुरु सतगुरु तुमको हुए दयाला संत संग तेरकी सतगुरु तुमको हुए दयाला संत संग तेरकी कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन की तंत्री कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन की तंत्री

हाँ जी राम रसायन नाम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो राम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो नित उठ पियो ए राम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो नित उठ पियो राम रसायन नित उठ पियो ओ राम रसायन।

जे बड़ आप ते बड़ तेरी दात, जैन दिन करके कीती रात, खासम विसारे हैं ते कम जात, नानक ना वै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा।

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अबर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तन टूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी जिन का भौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आस्था महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी भरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कै रहउ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो।

कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे दारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निभरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरी अस्तु करे हो रक्षा। राख ले हो मुझ राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कांता। काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिव जू अवतरा। काल पाई कर विष्णु पर काशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बद कियो। कट कट के अंत

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के बट बट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह पारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे।

सवैया पाए कहे जबते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ।

हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां।

कोत नानक प्रभु शरणागति रखन को समरथ ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत अमृत वेला सच नई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दो तो दे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेर कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई

परम सत्कार योग गुरु जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप साध संगत सत चितनंद परिपूर्ण परमात्म देव अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपार बख्शिश कीती है नहमत कीती है जो अमृत वेले दा अमोलक समा सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल शब्द अवतार सारे संसार दे सांझे सतगुर उन्हां दे पवित्र सचखंड चरना कमलां विच बैठ के सफल करन दा उद्यम बख्शिया है। आप माई भाई धनता दे योग हो जो गुरु दी कृपा गुरु दे बख्शे उद्यम सतगुरानी बख्शी हुई प्रेरणा दा सदका नित नेम अनुसार सतगुरां दे चरणां विच हाजर होए हो धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र दर्शन जो बहुत वड्डियां भागां नाल गुरु दर्शन पावे वड भाग बहुत वड्डे भाग होण उदों गुरु दे दर्शन दर्शन कौ लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई बहुत वड्डे चंगे कर्म होण उदों सतगुरां दे दर्शन फिर सतगुरां दे चरणां विच बैठ के सतगुरां दे बचन अमोलक अमृत रूपी शब्द कथा कीर्तन उपदेश सरवण करना ये बहुत होर वड्डियां भागां दा कम सो आप धनता दे योग हो जिन्हां नूं नित नेम अनुसार सतगुरां ने सेवा लंगरां दी संगत दे दर्शन दीदार ते फिर बैठ के गुरु दे चरणां विच गुरबाणी दे पाठ कीर्तन कथा सरवण करन दा मूलक समां बख्शिया है। गुरु जी दी रहमत दा सदका गुरबाणी दी विचार पट्टां दे सवैयां दी विचार सतगुरां दी महिमा गुरु अर्जन पातशाह महले पंजवें ते सवैये महान विद्वान वेदां दे अवतार सतगुरां दे सनमुख चरणां विच हाजर होके अपने पिछले जन्म दे पाप नूं बख्शाउण वास्ते प्राश्चित करन वास्ते गुरु दी शरण विच जो उपमा वड्याई जो गुरु दी शोभा जो सतगुरां वास्ते सच्ची जानकारी सानूं दे रहे ने आओ सारियां संगतां तुसी अदब सत्कार दे नाल सरवण करदे हो धन गुरु ग्रंथ

हाथ पाड़े करे निवास पूरी दुकान कर ब्राह्मण पूरे नाम पूरी रास पूरा व्यापार

कापड़ तक परमेश्वर राखी भोजन की तंती कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन।

अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो सदा चिर जीव हर सिमरत आनंद अनंता अमृत पियो सदा चिर जीव हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूरे हा रंग तमाशा पूरे आशा

राम नाम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो राम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो नित उठ पियो ए राम रसायन नित उठ पियो नित उठ पियो नित उठ पियो राम रसायन नित उठ पियो और राम रस

छोड़ पड़ी अमृत प्रथम राग जय जान खंडे की पहुंच चाहे छो सिंह प्रधान अवरना पहुंच जो तिनको सगली सोच पड़ी सोजी सोच पड़ी तिनको सगली सोच पड़ी।

हो सगल कही संत हो सगल कही जी सत संतोख जया कर्म सुख सत संतोख दया धर्म सुची संत मंत्र

कहो नानक कहो नानक कहो नानक कहो नानक कहो नानक कहो नानक जिन मनो पछाणिया कहो नानक जिन मनो पछाणिया परमेश्वर जाणिया परिया परमेश्वर कहो नानक जिन मनो पछाणिया तिनको फजली छोड़।

0: तो सगली खोज तई ओ तिनको सगली खोज तई
1: तो नानक दिन मनाओ पछाड़िया
0: ए वाह वाह ओ वाह
1: वाह
0: ओ वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह ओ वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह वाह वाह ओ वाह वाह ओ वाह वाह ओ वाह वाह
1: ओ तन को सगली खोज तई प्यारे तन को

धन गुरु धन पांच प्यारे, पांच प्यारे चाकर गुरु गुरु दिवाया नाम दिवाया।

प्रथम मन पर बोध अपना। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर बुझया, मीत हमारा सोए। जिन्ना संदड़िया दुरमत वंजे, मित्र असाड़।

उतरा नानक रंग ना उतरा नानक रंग ना उतरा वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि वाहि

मन इच्छत ही फल पावत है, मन इच्छत ही फल पावत है, मन इच्छत ही फल पावत है।

जाने आवे हर जन ताका दुख निवार जन्म मरण ताका हर अतकाल उधारे गुलाब के काल उधारे बाबा अमृत।

अठक तीर्थ जे लावै उतरे नहीं मैं इन पट अंदर पार उतर ते भले संसार इन ले हो लगा रब ते पी देखने विचार।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विसर विसखाई, माया मोह परम पै पुले, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, कहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई।

जीव आत्मात्मा जात जाकर जन्म मरण विहीन जकर बकर फिरा चतर जाको मानी पर दीन लोक चौदांगे विखय जग जप जय जाप आद देवन आद मूर्त थप सब जह थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरुख अपार सर्व विश्व रचियो सुयम पाप गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख देश धर्म धाम से भरम रहत पूजा लख भेश अंग राग न रंग जा कहीं जात पात न नाम गर्भ गंजन रोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी गानो सत एक पुरुख बतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरुख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदयन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग हर रेख परम वीर प्राण जा कहे नेत भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही बहु चित मद पार छंद तब प्रसाद गुणगन उदार मह महापार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दन नाश

में एक अक्षरी शांत अजय अलय पय भय पुव जुवनाश गाश गंज पंज लख बख काल दयाल लेख बेखो नाम काम का डाय नाथे परमाथे जोनिय मुनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजय लेखे भुजंग भरयाद छंद नमाज तल प्रणामे समाज तल प्रणाशे अगंजल नामे समाज तल निवास इंद्र कामंग विभूते समाज तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सरसत रंग प्रणाशी ग्रीमल कनिंदा समाज तल निवासी अजायब विभूते अजायब गरीम हरियंग करियंग ग्रीमल रहीम चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संघे अपंग अंग भूते चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संघे अपंग अंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु जी होता प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं एक ओंकार सतगुर प्रसाद तब प्रसाद सोइए पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जर जर संग अनूप दंग सुरंग सवारी कोट तरंग कुरंग से कुदत पौन के गौन को जात निवारी भारी पजान के भू बली वे दुनियाव शीतन जात बिचारी एते पाए तो कहां पाए पूपत अंत नांगे ही पाई पदारी जीत फिर सब देश दसान को बाज दटोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारी ऊत भविख भगवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारी सरी पद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेवन एक वसिख है वेद पुराणक देव कराण जमीन जवान सवान के पिख है पौन आहार जति जतार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखा है सुध सुबहादुर अंत दुबाह सुसार सुनादुर जान दलाएंगे भारी गुमान परे मन मैं कारू पर्वत पंख लिना लेंगे तोर हरी नोर मासन माते मदंगन मान मलाएंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलाएंगे वीर पार बड़े बरे आर बचारे सार की दार बछैया दौर सदेश मलिंद मासन मातिक जान के मान मलैया गाड़ गुड़ान को तोड़ नहार सुबात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दान देव फनंदन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे जीव जते जल मैं सल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर दापन बाढ़ जात धन पापन के बहु पुंज खपेंगे साधु समूह प्रसन्न भरे जाग सदर सब लोग जपेंगे

राज करेंगे कोटि स्नान गजा दिखदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत भसे जम भास भरेंगे जे नर सरिपत के बरसें पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहां पहो जो दो लोचन मुद कह बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो नाथ फिर अलिये सात समुद्रन लोग गए उपर लोग गवायो बास की वख्यान से बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहो सुन लियो सब है जिन प्रेम की ओ तनी प्रभ पायो काहू लै पान पूज करे सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लखे

घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की बीर पछाणत। चीटी ते गुंजर अस दूला, सब पर कृपा दृढ़ कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाही साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदर्ख करा कर तारा, पर जब दर्द तब दी अपारा। जब या करख कर दो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरा ते निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद नील नाद संभ।

तुमरा लखान जाय प्रसार कह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सिद्ध जगीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा व बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम्पव आदि जुगा स्वरूप सुजम्पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग्रह दोष जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे दिन के दोष दुखता वह मरे पुरख जवन पग परे

दुख विसारण अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्या मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाली साचे साहिबा क्या नाही करती रह करता तेरा सब किस है जिस देश पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मनाई वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दियां ए बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन काओ से नाम हर कह लागे कहे नानक दह सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लवैबन दे नमाणी लवै बाजों क्या करे बेचारिया तुद बाल समरथ कोय नाही कृपा करबन वारिया इस ना और साओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक निवै बाजों क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा गलवे कटे ज्ञान जन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक ही आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे त सोई जन दे दिसन और क्या करे बेचारिया एक परम पूले फिरे दे दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मलो जिन्ना पाणा पावे कहे नानक जिस दे प्यारी सोई जन पावे आप हो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी करें कहानी अकथ गेरी गेत द्वारे पाई है धन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्या गुरु केरा गावो सची बाणी कहे नानक सुनो संत कथ्यो अकथ कहानी ए मान चंचला जतराई किने ना पाया जतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जनेत परम पलाया माया तमोनी जना कीती जन ठगौली पाईया गुरबाण कीता दिसै बिटो जन मोह मीठा लाया कहे नानक मन जान चलो जद राही गने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों जित लाईऐ ऐसा काम मूले न कीचै जतंत पछताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया कने तेरा अपना आप तू जाण है

मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया और गाओ मंगल नित सखी अशोक दुगना ब्या पे गुर चरण लागे जन सभागे अपना बिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभाव मिलया करण कारण जोगो हे शरीरा मेरे इस जग में आए कह क्या दुध कर्म कमाया के कर्म कमाया दुध शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सु हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन बसया पूर्व लिखया पाया कह नानक शरीर प्रवान हुआ जन सतगुर से उचित लाया हे नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो धरी हर बिन वरना देखो कोई हर बिन वरना देखो कोई नदरी हर निहालया हे वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझा जा वेखा हर कह हर बिन वरना कोई कह नानके ने तरह दसे सतगुर मिले आए जब दृढ़ होई

सुनते पुनीत कहते भवत सतगुरया बर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजी अनहर तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू था तुरतुल पहरदास जी ओ पिंड सब तेरी रास मात पिता हम तेरे तुम्हारी कृपा में जाने को।

शरण समर्थ अगोचर स्वामी उदर नानक ब्रभ अंतर जामी। शरण समर्थ अगोचर स्वामी उदर नानक ब्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन का आपे प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रतापे जन अवर न जानी ओते पोते जन हर रस राते सुन समाधे नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते।

स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपने गात में ते जानह आपे आपन संग आपे प्रभराते तुमरी ओस्तते तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपह जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोने रसन बखा

मार्ग पावै, कार गहल हो ओढ़ निभावै। कहां बुझारते बूझै डोरा, निस कहिया ता समझै पोहरा। कहां बिसन पाद गावै गुंग, जतन करै ताओ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहां उस गमन। करतार करुणा मै दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवै ना चीते, जो बैराई तासो प्रीते। बलुआ के गृह

ब्रह्म ज्ञानी कह तिहरिज एक ज्यों बसधा कौ खोद कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह माने होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन पने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सबू पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म

ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार ओमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तहवत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का होए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी सांग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एका रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत, ब्रह्म ज्ञानी हूँ बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कहर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी का खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाख्युर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मेत कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सर जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सबू परिहाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। उरत हरे जो अंतर नाम, सर्व मैं पेख भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सकल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत।

सच करणी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग केश, त्रिहु गुण ते प्रभु भिन्न, तिसहि बुझाए नानक।

एक करह एक रंग नाना वेद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीवै नानक हर नाओ नाम के तहरे सगले जंत नाम के तहरे खंड ब्रह्मांड नाम के तहरे सिमर

संग उदरे सोने श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए रूप साते जाका साते अस्थान पुरख साते केवल प्रधान करतूत साते सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पाते सत करणी निर्मल निर्मली जिस है बुझाई तिस है सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास साते नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश सत निरते बूझै जे कोए नाम जपत ताकि गत होए आप साते किया सब साते आपे जाने अपने मित गाते जिसकी सृष्ट सो करण हार अवर न बूझे करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस भावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पह बिस्म।

आप साते साते सबत हरि आपे गुणकारी शब्द साते साते प्रभ भक्ता सुरत साते साते जस सुनता बुजन हार को साते सब होए नानक साते साते प्रभ सोए साते स्वरूप हृदय जिन मान्या करन करम तिन मूल पछान्या जा कर दै विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पहै ते निरपह होए बसाना जिस ते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गड़

परम मोह दुख तह ते नासे तप तमाहे ठांड वरताई अनंत पह दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहो चूका निरपाव होए बसे सकल ब्याह दे मन ते खै नसे जिसका सा तिने कृपा तहारी सार सांगे जप नाम मुरारी। चेत पाई चूके परम गवन सन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आपे सरगुण भी ओही कला तहारे जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत।

प्रसार प्रभु की दृष्टि महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सरगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सरा निहाल बंधन काट मुक्त जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सर संग हजू।

इहो काशना दृश्यता पाप पुन तब कह ते होता। जब तहरि अपन सुन समाधे तब बैर विरोध किस संग कमाते। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ष सोग कहो किस है व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करन हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तहै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन मरन कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख कमन तृप्तावै। करन करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद तेव कहा को चीन। जब अपन आप उरत हर तो सगन अपसगन।

दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप। दुहु पाख का आप है तनी उनकी शोभा उन्हु बनी। आप है कौतक करे आनंद चोज आप है रस भोगन निरजोग। जिस पहावै तिस आपन नाये लावै जिस पहावै तिस खेल खिलावै। बेसमार अथाह

तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जीव की जुगते जाकर सब हाथे, अंतर बाहर जानहो साथे। गुण निधान

रचियो सोत सह त्याहाते। जिस पहवै तिस लै मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक का सेवा बन आई, हुकुम बूझे।

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तहन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पह अमरा पद पाया साध संग नान।

निगरी एक सौ घट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देख्या जिस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट व्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पायाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म

जो जन तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ते जिस हृदय भगवंत तहन तहन तहन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह सुआओ जन का संग चेते आवे नाओ आप मुक्ते।

मुक्ति करहो सार संग अग्न सागर तरहो हर तन के परले हो पंडहार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जियो का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सोने सोने आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सोने सरनी आए कर कृपा प्रभ आप।

नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तहरी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तते करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज।

0: लो एक क्वेश्चन रख दिता आ समझने इन्हें तो कई भविखे भी अक्षर निकलते हैं इसलिए इन बड़ा एकाग्रता न समझने की जरूरत कह लगे हे मन जरा समझ ले चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे हा हे मन सुन चतराइया नाल रब नहीं मिलता कहन लगे जे तेनू अपनिया चतराइया ते माण ही है ते जरा गिरेबां विच झात मार तू ते रब दी पाई हुई एक बुझारत नहीं बुझ सकिया तू अपनी चतराई ते माण कर ले कह लगे रब ने मनुख दे सामने बड़े चतराइया ते सियाणप रखन वाले अपनी चतराई ते मान करन वाले मनुख दे सामने एक खवाल पा एक बुझारत पा दी ओ की ओ बुझारत है ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया जिहड़ा परम पुलाणी होवे उसे नूं बुझारत आखदे ने जिंदे विच मनुख भुल सकदा हो जे तेरे विच कुछ बुझना पवे उहनूं बुझारत कहिंदे ने गुरु कहते संसार के सामने रब ने एक बुझारत पा दी ए माया मोहन जी उस बड़ी खूबसूरत लगती है बुझारत कहते कि जी उपरों होर हो अंदरों होर हो लफज होर हो पिछे अर्थ होर हो बुझारत कहते गुरु कहते हे भलिया तेन अपन चतराइया से माण तू समझना मैं रब न चतराइया जित लांगा हालांकि गुरु ने अपनी रस्म माणी आख्या कहने लगे ना तू आवे वस कितै सियान पै ना तू आवे वस बहुता दड़ दे चतराई ते माण है ना कहने लगा तेरी चतराई किस काम है तू ते रब दी पाई हुई एक बुझारत नहीं बुझ सकिया उसे विच ही फसनी बुझारत की है ए माया मोहनी जिन्हें एत परम भुलाया फिर कहने लगे ख्याल करी माया तमोण इतने की जिन गौली पाईया जिन्हें तेरे सामने बुझारत रखी है उसे ने तो माया पैदा की है किसी होर ने थोड़ा पैदा की है पर तेरा टेस्ट है तू पास उदो ही होएगा जदों इस बुझारत नु बुझ लेगा समझ जाएगा कि यह माया परम भुलाणी है। देखो कई बार असी इनके अर्थ करन लग्या कंफ्यूज हो जाने मैनू कई भी भैन एक गल कह सुनी है जिन्होंने आख्या जी फिर तो कोई फर्क ना हो कुर्बान किया तो सभी जिन मोह मिठा लाया फिर तो मोह मिठा लाने वाला रब ही है उनके तो कुर्बान जाइए जिन्हें सू मोह फिर तो मोह बड़ा चंगा रब नहीं लाया गुरु कहते तो उन्हें पाई तेरे सामने बुझारत क्योंकि तेनों अपन चतराइया से माण है तू तो हुक्म नहीं मान गया तू कहना मैं रब न अपन चतराइया प्राप्त करा गुरु कहते भलिया जे तेन अपन चतराइया से माण है तो लै आऊंगी एक बुझारत चू निकल के विखा उन्हें तू अज तक तू निकल नहीं सकिया ये माया मोहनी जिन्हें एक भरम भुलाया माया तो मोहनी किने की जिन ठगौली पाईया कहने लगे कुर्बान किया किसी विचों जिन मोह मीठा लाया जे तेन बुझ नहीं आँगी हो फिर जिन्हें तेन मोह लाया ना उस अकाल पुरख तो कुर्बान जा भी उनकी बुझारत ऐडी महान है तो आप लाके महान होगा कहने लगे इसलिए अपन चतराइया से मान ना कर चतराइया से मान छड़ दे भाई गुरदास जी की साखी भी आती है मैं इतिहास के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि भाई साहब ने भी कदे एक बार आख्या जे गुरसंग वरतदा सिख सिदक ना हारे तो फिर आखना पिया जे गुर फरमाए सिख नूं क्या सिख विचारा अपनी चतराई से मान ना कर चतराइया नाल रब नहीं मिलता वो तो मिलता तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाईए उनके सामने अपने मन दियां चतराइया ते सोचां छड़नियां पैंदियां ने उनके सामने आना होना पैंदा है ते जदों आना हुंदा है ना गुरु के सामने जदों आना हुंदा है रब के सामने आने नूं मां बाप सीने लगा लैंदा है ज्यों ज्यों सियाणा होई जांदा त्यों त्यों मां बाप तों दूर तुरिया जांदा जदों आना हुंदा उदों उंगली फर के तुरदा जदों आना हुंदा उदों अनेक गलतियां भी करे बख्शिया जांदा उदों गोदी विच बैठन दा हक मिलदा है फिकर चिंता कोई नहीं हुंदी ज्यों ज्यों सियाणा हुंदा पहला उंगल छुट जांदी है पिता दी मां दी गोद नसीब नहीं हुंदी होर वड्डा हुंदा फिर हजारां कुआं ते दूर भी चला जांदा मां बाप सोचण लग पैंदे चलो कोई नहीं हुण सियाणा है जे उन्हें कोई पूछे ना भी वो मां जिन्हों तू एक पल नहीं से विसार दी इकले नू कमरे में छड़ के कितने विच नहीं से जांदी भी इकला ना बच्चा रह जाए अज वो हजार जा दो हजार जा दस हजार कोते चले आखिर कोई नहीं हूं सियाना है
1: ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
0: ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਤਾ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ।
2: ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ

नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आगम अगोचर

0: जगन्नाथ वो जगत का मालिक है, जग जीवन जग नू जीवन देने वाला है। माधो मां कहते ने लक्ष्मी नू, धव कहते ने पति नू, माया का पति वाहिगुरु परमात्मा। जगत का मालिक है, जगत नू जीवन देने वाला है। पिता संगत हर चीज के अंदर जीवन रहो वाहिगुरु परमात्मा की कृपा नाल ही चल रही है। जिन्हों उते बख्शिश हो जाती है उन्होंने ये गल समझ आ जाती है, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया ता तन खाकू राल। पर कुछ ऐसे भी ने जेड़े जीवन तो चाहते हैं पर जगत दे जीवन देन वाले वाहिगुरु परमात्मा नु चेते नहीं करते। कबीर साहब जी का कथन है, जब तक जोत कायम में बरतै आपा पशु न बूझै, लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै। जीना चाहता है पर जीवन जोत देन वाले वाहिगुरु परमात्मा नु विसार के। एक गल गुरबाणी ने सानू समझा दिती, बंदिया चेते रख जी जी सत्कार आदर मान तैनू उदों तक ही मिलना है जदों तक जग जीवन वाहिगुरु परमात्मा की कृपा हो रही है। ते जिदन जोत उसकी अंदरों निकल गई उस दिन भावें कोई अमीर होवे ते भावें कोई गरीब होवे किसी ने नहीं पूछना। सतगुरां ने यह गल सानू समझाई। महाराज का कथन है, लंका सा कोट समुंद सिखाई तै रावण घर खबर ना पाई। क्या मांगू किस थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती तै रावण घर दिया न बाती। इथे महाराज कृपा करते ने जग जीवन है, जगत नू जीवन देने वाला है। माधो है लक्ष्मी का पति है, माया का पति है।
1: पाओ भंजन रिद माहे अरादो,
0: पाओ भंजन सारे जीवां दे डर दूर करन वाला है। अंदर आराधन जोग है, पै भंजन रिद माहे अरादो, सारे डर दूर करन वाला है। ते अंदर आराधन जोग है,
1: ऋषिकेश गोपाल गोविंद।
0: ऋषिकेश ऋषिकेश का भाव किते वो शहर ना समझ लेना जिन्हों आप ऋषिकेश कह दें, नहीं इस दे अर्थ समझ लगे नु संधि कर लीए। रखीक एस रखीक कहते ने इंद्रिया नु, ईस कहते ने मालक नु। ओ वाहिगुरु परमात्मा जेड़ा इंद्रिया का मालक है। रिखी केस पाठ करने रखी केस इंद्रिया का मालक, रखीक एक जेड़ा इंद्रिया का मालक है। सत्संगत ये ठीक है, रब ने सानू अखां दित्ती आ रही जेबा दिती है, कान लाए ने, होर साडे कोल इंद्रे ने कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे, पर ध्यान देवियो अखां तां शरीर नाल लगिया ने पर जोत नहीं, कन्न शरीर नाल लगे ने पर कन्ना दे अंदर सुनन दी ताकत नहीं, जीभ तां मूंह दे अंदर पा दिती पर जीभ बोल नहीं सकदी। हुण इस अर्थ की कढांगे, इंद्रे बनाए ने रब ने ਪਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ